दिता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आख्या ऐ एक धरती दी उपज खान वालेओ एक चंद ते सूरज दी रोशनी मानन वालेओ एक आबो हवा जल छक के जीवन वालेओ क्यों लड़दे हो क्यों आपसी मत भेद समझदे हो क्यों ऊंच नीच दे भेद बना के अपने विच दीवारां खड़ियां करी बैठे हो साच कहूं सुन ले हो सभै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो ए शुभ उपदेश दिता ते फिर खालसा पंथ दी साजना कीती और ओ खालसा संत सिपाही बनाया जिन्हा दा जीवन है पै काहू को देत में न पै मान त्यान अकाल पुरख वाहिगुरु दी पूजा परचा शब्द दा ते दर्शन खालसे दा कहा भाई जो खालसे दा दर्शन करेगा उना खालसियां विचों मेरा दीदार होवेगा इसलिए संसार तो बाजी ओई जित के जाएगा भाई जिन्हां ने जपया

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.
3: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दैट्स ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रैडफोर्ड 7230303
0: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

गर्ल्स, आदमी मैं अच्छा हूँ, दिल का भी सच्चा हूँ, बट बी यू टी बट आई एम अ

0: Second group, quality homes from a landlord you can trust.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
6: क्या आप किसी खास तकरीब पर एहतमाम कर रहे हैं? तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
7: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
6: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
7: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
6: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274-733-732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
8: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे-गोशे में सुनी जाने वाली आवाज यह आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम स्टूडियो पर और 100.6 एफएम पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है। अगर आप डीएबी पे सुनना चाहें तो आप ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स एंड वेस्ट लंदन में आप हमें सुन सकते हैं। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं, और अगर आप वेबसाइट पर कहीं भी हैं सुनना चाहें तो आप हमें वेबसाइट के जरिए www.sunriseradio.fm पर सुन सकते हैं। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हमारे हुमा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल।
0: तो यहाँ सिलसिला रुक गया आपका दुआ सलाम के बाद। तो दोस्तों अब क्यों काफ़ी टाइम आगे निकल चुका है तो हम चाहेंगे कि चलें पहले हिट ऑफ द आवर सुन लें और मज़ीद बातें प्रोग्राम के दौरान होती रहेंगी।
2: Hit of the hour brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
3: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, हिट ऑफ द आवर की शक्ल में आप दोस्तों के लिए पेश किया था। और दोस्तों, अब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है, तो कमर्शियल पे जाने से पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो हमें बता रही हैं कि इस वक्त टाइम हुआ है 11:14, यानी कि 11:14, और हीरा खान साहब फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और आपके नाम कमर्शियल के बाद जो गीत होगा आपके नाम होगा, और प्यारी बहना सादिया जी आपके नाम होगा, अजरा जी आपके नाम होगा, और आपके साथ साथ गुलाम भाई का पूरा स्टाफ उनके नाम भी होगा, नवीद भाई के नाम भी होगा। तो चलते हैं, और इसी साइमा जी आपके नाम भी होगा, तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद दोस्तों एक प्यारा सा गीत होगा, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ईसॉल कोर्सेज। चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
5: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। हमारे प्यारे दोस्त जनाब चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब अच्छा भी लगा जब आपने फोन किया, आपकी आवाज़ सुन के बड़ा दिल खुश हुआ। साथ में आपने कहा यार मैं तो गाड़ी में बैठा सफ़र कर रहा हूँ और एयरपोर्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपसे पहले बात कर लूँ जाते जाते। तो जनाब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, प्यार का, बहुत शुक्रिया जो आपने इतना दिल में रखा और हमें फ़ोन किया और बताया कि आप जनाब पाकिस्तान जा रहे हैं और जल्द वापस लौट के आएंगे। हमारी दुआएं हैं जनाब चौधरी मुनीर साहब आपके लिए, अल्लाह आपको खैरियत के साथ अपनी मंजिल मखसूस तक पहुँचाए और वापस खैर से ले के आए, और जितना आपका वहाँ जो है टाइम गुजरे अच्छा गुजरे, प्यारा गुजरे। मौसम तो बहुत प्यारा है वहाँ अब, तो अल्लाह करे आपका टाइम भी बहुत ही प्यारा गुजरे, वहाँ पर अच्छी यादें लेकर हमेशा की तरह आएँ। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं और शुक्रिया फ़ोन करने का और बताने का। और जाते जाते ये गाना आपके नाम करते हैं, और उसके बाद नौतान भैना आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे। वाजिद भाई एड्रेसवील से आपने भी फ़ोन किया, आपके नाम भी करेंगे, और मुना जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: Yeah.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और अभी ये गीत हमें कमर्शियल ब्रेक तक ले आया है और ये गाना प्ले किया था जनाब चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले। जनाब रवा दवा हैं एयरपोर्ट की जानिब, अल्लाह आपको खैर से लेके जाए पाकिस्तान और खैरियत के साथ वापस लेकर आए। आपके साथ रब्ता रहेगा जनाब, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। तो दोस्तों अब हमें तारिक जुल्फी साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आप अपने दोस्तों के लिए, इरा खान साहब के लिए और मलक कशफाक साहब के लिए गीत सुनना चाहते हैं, उनके नाम करेंगे। और जरीना साहब आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे और आपके साथ साथ दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं। अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: 24 hours a day, Sunrise Radio. बहन तुमने

0: शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

जी दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा गीत सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। अब एक बार फिर अलका याग्निक को सुनते हैं, लेकिन उनका साथ निभा रहे हैं उदित नारायण है या कुमार सानू है, ये आप सुन के ही बता सकेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में उदित नारायण एक बार फिर उनके साथ हैं। तो ये गीत मलिक इम्तियाज साहब, और जनाब कैसे हैं जनाब, और वीकेंड कैसा है आप दोस्तों का गुजरा? उम्मीद रखते हैं अच्छा गुजरा होगा। और आप के साथ इस वक्त मौजूद हैं आपके सभी साथी जनाब इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, उमैर, बाबर, इफराज वो भी हैं। और इसी गीत को नजमा साहबा, इफत साहबा, नाजिया साहबा, अमीदा साहबा, रबीना, बुशरा, इकरा, ताजीम, जायदा, साइमा आपके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम सुनने वालों के नाम करेंगे जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना लड़का यज्ञिक और उदय नारायण की आवाजों में। इसके साथ ही दोस्तों टाइम चेक का टाइम हो गया है।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
2: स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि इस वक्त 11:47 हो रहे हैं। दैट्स मीन 11:46।
0: जी जी बोले।
2: अभी हमने कमर्शियल करना है। कमर्शियल का टाइम हो जा रहा है और उसके बाद फिर सॉन्ग्स पे जाएंगे।
0: कौन सा सॉन्ग है, कोई पुराना नया क्या?
2: इस वक्त तो हमने पुराना लगाना है।
0: ठीक है भाई, चलते हैं। तो दोस्तों पुराना गीत जो होगा वो नज़र करेंगे तारिक ज़ुल्फ़ी साहब, नुतान भैना, वाजिद भाई, हीरा खान साहब, तारिक ज़ुल्फ़ी साहब और ग़ुलाम भाई, सफ़ीउल्ला भाई और दीगर तमाम दोस्तों के नाम होगा। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
3: No, sorry, mate.
4: No, we don't have that part.
5: Have you tried down the road?
6: We can get it in, but it won't be for a few days.
7: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. full terms at mbvans.co.uk/mobileovervan.
8: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
9: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
8: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
9: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692 3788.
10: Official media partner Sunrise Radio.
11: Sunrise Radio. Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
12: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: जी अभी आपने चलिया फिल्म से लिया हुआ गीत लता जी की प्यारी सी आवाज में सुना, और आपको अच्छी तरह याद है कि नहीं याद है जब ये गाना आपने पहली बार सुना तो आपने कहाँ सुना?
1: मैंने कहाँ सुना? मैंने रेडियो पे ही सुना है।
0: नहीं सुना तो रेडियो पे ही होगा, कोई जाहिर है बाहर गा तो नहीं रहा होगा लेकिन कब सुना कोई याद है? कितना अरसा बीत गया
1: वो मुझे बिल्कुल नहीं याद।
0: बिल्कुल याद नहीं,
1: बिल्कुल नहीं याद।
0: चलिए कोई बात नहीं, इतने गाने हैं सुनता है बंदा किधर याद रहती है। कुछ ऐसे गाने होते हैं, कुछ खास वाकया होता है
1: जी,
0: जब वो गाना बंदा कोई सुनता है तो फिर कोई अचानक ऐसा वाकया हो जाता है तो फिर बंदे को याद रहता है मैं ये गाना सुन रही थी या सुन रहा था तो ये वाकया हुआ था। तो फिर तो गीत याद रहते हैं, कुछ ऐसी अनहोनी बात हो जाए या कुछ ऐसा गीत हो जाए जो आपको इतना अच्छा लगा हो कि वो आप जब सुन रहे हो तो फिर आपको याद रहे कि मैं कहाँ जा रही थी या जा रहा था तो ये गाना उस वक्त लगा था तो पहली बार मैंने सुना था। कोई खास वाकया हो तो फिर ही याद रहता
1: है। बहुत ही ज्यादा खुशी का मौका हो या वैसा
0: या गम का,
1: या गम का तो वो
0: गम हो जाए, गम में गाने तो कोई नहीं सुनता
1: नहीं, लेकिन अगर बज रहा और कोई खबर आ गई।
0: हाँ सही है सही है। तो दोस्तों अब चलते हैं, हमें मीरपुर में तबस्सम साहबा भी सुन रही हैं, उनके नाम भी करेंगे और इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे। दीगर जो दोस्त इस वासन रेडियो की नशरात को सुन रहे हैं उन्हें तो चलते हैं। सादिया बहन आजरा जी आपके लिए भी और कमल साहबा आपके लिए भी, तो चलते हैं सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद और हुमा खान आप के साथ हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पहुंच गए हैं। उम्मीद रखते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा और कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करें। तो जनाब हुमा जी, अब दूसरे हिस्से में आगे हैं और अब इस हिस्से में कोशिश तो है कि हम अच्छे गाने लगाएं।
1: बिल्कुल।
0: तो आपके कोई जहन में गाने हैं कि कोई आप हेल्प करेंगी? अभी तो हिट ऑफ द आवर लगाएंगे ना?
1: लगाएंगे जी जी।
0: तो मैंने सोचा आप,
1: हाँ मैं जरूर से
0: बताएंगी कुछ।
1: बिल्कुल,
0: मुझे ही लगाने पड़ेंगे।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगी।
0: बताएंगी, चलिए फिर ठीक है। तो जनाब नदीम मंसूर साहब, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, क्योंकि आप जब फ़ोन कर रहे थे तो हम बातें कर रहे थे इसलिए आपकी कॉल नहीं ले पाए। और उसके बाद अब्दुल कय्यूम साहब फ्राइजिंग हॉल वाले, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, बहुत अच्छा लगा आपने फ़ोन किया, आपसे गपशप भी हुई, हल्का फुल्का मजाक भी हुआ, अच्छा लगा। और जनाब आने वाला गीत जो हिट ऑफ द आवर की शक्ल में है आपके नाम भी करेंगे और नदीम मंसूर साहब और दीगर तमाम दोस्तों के नाम ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
2: The hit of the hour is brought to you by Sofi Jewelers with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sofi Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274 056 014.

0: क्या गाना था कमाल सानू की आवाज में दोस्तों. फिल्म का नाम था मजे चाहते हैं प्यार हुआ बदनाम. तो जनाब ये गीत आप दोस्तों के लिए पेश किया था और अब जनाब चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं.
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक.
2: स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि इस वक्त 12:14 हो रहे हैं. इसका 14:12.
0: तो अब कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद जो गीत होगा. तबस्सम बहना, आपने मीरपुर से फ़ोन किया और आपने कहा कि आप जनाब आसिम के लिए और शहजाद के लिए आपने फरमाइश की जिस गीत की, वो गीत कमर्शियल के बाद आपके लिए पेश करेंगे. तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी और साइमा नाचते उमा खान की मुलाकात होगी. और तारिक भाई बी डी ए से आप भी फ़ोन कर रहे हैं, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे. तो चलते हैं और खान साहब आप भी फ़ोन कर रहे हैं जनाब, तो आपके नाम भी करते हैं ये गीत. तो इन्जॉय कीजिएगा.

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 3030 ब्रेडफोर्ड 7230 3030।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
3: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join and as a member you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। तबस्सुम बहन, आपने मीरपुर कश्मीर से फ़ोन किया था और ये गीत सुनना चाहा था आसम भाई के लिए और शहजाद साहब के लिए। तो जनाब, किया गीत आप के हस्बैंड और आसम भाई के नाम, और उसके बाद जनाब तारिक भाई बीडीएड से आप भी पाकिस्तान जा रहे हैं जनाब कल, तो एनीवे वी गोना मिस यू, तो खैर से जाइए, खैर से आइए। उसके बाद प्यारी बहना सोनिया बर्मिंघम से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया, ये आने वाला गीत आपके नाम भी करूँगा। उसके बाद ग़ुलाम भाई आपने भी फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो जनाब आपके नाम ये आने वाला गीत पंजाबी का गीत है आपके नाम और आप की जन्म से आपके स्टाफ के नाम, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इंजॉय करेंगे। खान भाई आपके नाम भी करेंगे, आपने कहा तो आपका कहा टाल नहीं पाते हम, तो आपके नाम ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं इस गीत को। ये गीत हमारी प्यारी बहना सादिया को बहुत अच्छा लगता है, उनके नाम भी, आजरा जी के नाम भी। तो चलते हैं, सुनते हैं इस गीत को।

0: अलका याग्निक और गुरदास मान की आवाजों में दोस्तों आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। और अब जनाब वक्त आप क्यों खामोश हो गई हैं जनाब?
1: मैं खामोश नहीं हुई, आप बोले।
0: मैं तो बोल रहा हूँ, आप ही बोले ना।
1: वेदर नाइस है बस।
0: वेदर नाइस है, वेदर के बारे में सोच रही है?
1: वेदर के बारे में सोच रही
0: है। अब मैं तो सोच रहा था शायद सोच रही होगी, कमर्शियल का टाइम हो गया।
1: कमर्शियल का तो टाइम हो रहा है ना।
0: वेदर तो अच्छा है लेकिन हम अंदर बैठे हैं
1: जी।
0: हम तो 2 बजे ही बाहर निकलेंगे
1: जी।
0: चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों अब इस वक्त बाबर शाह पे 3 शहजादे होते हैं लेकिन एक पाकिस्तान गया हुआ है, आरिफ अली, और अब बशारत अली, सिकंदर अली वहाँ मौजूद हैं। उनके नाम ये गीत और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हैं उनके नाम ये कवाली माजे चाहते हैं। और ख़ान भाई ये कवाली आपके नाम भी करते हैं और नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी करते हैं और बात करके आपसे अच्छा लगा। और इसी कवाली को नज़र करना चाहेंगे जनाब प्यारी बहना साजिया जी, आजरा जी आपके नाम भी, गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम, और इसी कवाली को नज़र करना चाहेंगे इस वक्त जो साथी काम कर रहे हैं, मलिक इम्तियाज़ साहब हैं उनके साथ हैं जनाब इफराज

0: और इकमाज मुनीर वसीम इमरान मुजाहिद अल्लाह देता उमैर बाबर और उसके साथ साथ हीरा खान साहब भी फ़ोन कर रहे हैं। हीरा खान साहब आपके नाम भी करते हैं और उसके बाद इसी कवाली को सुनना चाहती हैं इकरा आप नजमा इफ़त नाजिया मीदा रबीना बुशरा ताजीम जायदा और साइमा के लिए, तो चलते हैं और इसी को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे। चलते हैं कमर्शल की जानेब। कमर्शल के बाद आप सुनेंगे बहुत ही प्यारी सी कवाली नुसरत फ़तेह अली खां और साथियों की आवाज़ों में, तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शल। कमर्शल के बाद मिलते हैं।
1: 24 hours a day, Sunrise Radio.
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY, on Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारी सी कवाली सुनी और नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में। खान भाई खुश हो गए होंगे आप कवाली सुन के। तो जनाब ईरा खान साहब, शुक्रिया आपने भी फ़ोन किया कि मैं कवाली सुन रहा था, और खान भाई आपने भी फिर मिस कॉल दी कि शुक्रिया। तो जनाब अब वक्त हमें बता रहा है कि कोई गीत नहीं होगा क्योंकि कमर्शियल का टाइम हो गया है, और कमर्शियल के बाद जनाब एक सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है, और टाइम चेक कर लेते हैं। वैसे तो उमा जी बोलती नहीं है, तो शायद टाइम चेक करवा लेते हैं, उस बहाने बोल पड़े
1: जी।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: इस वक्त स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि 12:42 हो गए हैं, जिसका मतलब है 12:42।
0: चलिए टाइम तो बता दिया इन्होंने, अब कमर्शियल का टाइम हो गया है, और कमर्शियल के बाद नदीम मंसूर साहब ने गीत की फरमाइश की है, तो जान उनकी फरमाइश तो ज़रूर पूरी करनी है हमने। तो नदीम मंसूर साहब बहुत शुक्रिया फरमाइश करने का, आपकी पसंद का गीत आपके नाम करते हैं जनाब कमर्शियल के बाद, और खान भाई आपके नाम भी करेंगे, ईरा खान साहब आपके नाम करेंगे, और जनाब इसके बाद तारिक ज़ुल्फ़ी साहब आपके नाम करेंगे, अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग हॉल वाले आपके नाम करेंगे, और जनाब इसी गीत को जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम करेंगे, और ग़ुलाम भाई आपके नाम, नवीद भाई आपके नाम, और जनाब सफीउल्ला भाई आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद हमारी मुलाकात होती है।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
5: ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
4: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
5: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੰਡੀ ਮਾਰੀ ਨੱਕਾ ਨਤੀਲਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਪੌਂਡ ਨਾ ਕੰਨ ਸਲਾਣੇ ਨਾ 1 ਪੌਂਡ, ਛਾਪਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ।
4: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ?
5: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9, ਟੈਲੀਫੋਨ 01274 488 935।
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

जी दोस्तों, अभी आपने मोहिंदर कपूर की हमराज फिल्म से लिया हुआ यह गीत उसकी प्यारी आवाज़ में आपने सुना, और इस गीत की हमें फरमाइश की थी जनाब नदीम मंसूर साहब। तो शुक्रिया जनाब नदीम मंसूर साहब फ़ोन करने का। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले गीत की जानेब। और सिकंदर अली, आपने फ़ोन किया, आपने जब कवाली लगी हुई थी आपके नाम जो आपका नाम जोड़ा था उसके साथ, तो आपने कहा अरे अमर भाई कोई रोमांटिक गीत सुनाओ, ये क्या कवाली लगा दी वो भी रोने वाली। तो जनाब कोई बात नहीं, अभी मेरा एक घंटा कुछ मिनट प्रोग्राम रहता है, आपके लिए काफ़ी गीत आएंगे जनाब, आप क्यों ऐसी परेशानी कर रहे हैं आप। तो जनाब चलिए सुनते हैं आप इस प्यारे से गीत को और इंजॉय कीजिएगा।

0: इस वक्त हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आ गए हैं और
1: अरे बाबा तीसरा हिस्सा आखिरी हिस्सा है।
0: ओ आखिरी हिस्से में आ गए।
1: दो हिस्से तो मुकम्मल हो चुके। वाकई आपका कसूर नहीं है, पता ही नहीं चलता कि
0: टाइम का पता नहीं चलता,
1: ये तो जल्दी गुजर जाता है। सही है,
0: एक बज गए
1: जी।
0: तो आगे हम कमर्शियल पे जा रहे हैं इसके बाद।
1: अभी तो प्रोग्राम ही नहीं शुरू किया, कमर्शियल पे कैसे जा रहे हैं? अभी तो हिट ऑफ द आवर बजाना है बाबा।
0: ओ या हिट ऑफ द आवर के बाद हमने क्लॉक का करना है, उसके बाद कमर्शियल पे जाना है।
1: मुझे कोई समझ नहीं आई आपने अब क्या कहा है।
0: बिल्कुल नहीं समझ में आई।
1: नहीं समझ में आई ना,
0: हमने टाइम चेक करना है ना।
1: वो टाइम चेक करेंगे हिट ऑफ द आवर के बाद।
0: हाँ वही कह,
1: आपको टाइम चेक की बड़ी जल्दी है भाई,
0: टाइम चेक
1: जल्दी है बड़ी। तो दोस्तों आप प्रोग्राम की, जैसा कि उमा खान ने बताया कि प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं, उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे और कोशिश होगी ये जो आखिरी आवर है इसमें भी आपके लिए अच्छे प्यारे और मियारी गीत पेश करने की कोशिश करें। तो चलते हैं दोस्तों, मजीद बातों में नहीं लगाते हैं आपको क्योंकि आखिरी आवर है और इसमें जनाब हिट ऑफ द आवर का गीत थोड़ा मस्ती भरा गीत है। खान भाई भी फ़ोन कर रहे हैं अब कि सोच रहे होंगे मेरे नाम करें तो आपके नाम किया। जनाब सोबत भाई रीड से फ़ोन कर रहे हैं, वो भी शायद कह रहे हूँ ये कविता कृष्णा मूर्ति की आवाज़ में गीत है जनाब, थोड़ा मस्ती भरा है तो आपके नाम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं।
2: The Hit of the Hour, brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: गाना एट ऑफ द आवर आपने सुना, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में मस्ती भरा गीत था। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
2: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 1:14 हो रहे हैं, दैट्स मीन 1:14।
0: तो इसके साथ कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद जो है वो गीत मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम।
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
6: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303, दास ब्रैडफोर्ड 7230303।

0: जी दोस्तों, अभी जो है वो एक प्यारा सा गीत आपने सुना सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में, और गीत के दौरान हम बातें करते रहे और अगला गीत हमने सेट नहीं किया। और मुझे जनाब पिछले आवर में उमा खान ने कहा था मैं आपकी हेल्प करूंगी, बताऊंगी कौन कौन से गीत हैं, तो एक गीत भी नहीं उन्होंने अभी मुझे बताया कि चलिए आमिर साहब ये प्ले कर दीजिएगा। तो अब मैं बातें करता रहा, अब फंस गया हूँ मैं कि कौन सा गीत लगाऊँ कौन सा ना लगाऊँ और क्या करूँ। तो अब समझ नहीं आ रही है, तो जाहिर है कि बातें करेंगे। उमा जी बोलिए ना कुछ, ताकि कोई गीत बताइए या वैसे कोई बात कीजिए।
1: आप ढूंढ रहे, मैं लिस्ट पे देख रही हूँ आप कौन सा।
0: आप देखे नहीं, देखना मेरा काम है
1: जी।
0: आप जो है ना सिर्फ बातें करें और ये बताएं कि आप जनाब कोई गीत है आपके जहन में या नहीं है।
1: मेरे जहन में इस वक्त तो एकदम से नहीं है।
0: अच्छा,
1: मैंने रेडी नहीं किया है।
0: अच्छा चलिए, नहीं है ना, आप कोई जहन में नहीं है तो आप में तो आपके जहन में तो आएगा ही नहीं मेरे ख्याल में।
1: तो इसमें चेक आप
0: मैं
1: नीचे कर रहे हैं
0: जी।
1: मैंने कहा आप लिस्ट
0: नहीं, वो जब मैं लिस्ट मैं देख रहा हूँ तो जाहिर है मैं देख रहा हूँ लिस्ट को आगे पीछे करके देख रहा हूँ, पर आपका देखने का फायदा ही नहीं है।
1: मैं भी ढूंढ रही हूँ।
0: नहीं, आप ढूंढ रही हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ पीछे आप देख रही हैं, तो फायदा तो नहीं है। तो मैं अब ये करूँगा कि गुलाम भाई का यानी कि उनके स्टाफ का फेवरेट गीत है,
1: ठीक है,
0: वो प्ले कर देता हूँ खामखा टाइम जया किए बगैर ढूंढने में। तो गुलाम भाई आप खुश हो जाइए जनाब, क्योंकि आपका फेवरेट गीत आपके आपका नहीं है ये फेवरेट गीत, लेकिन आपके स्टाफ का जो है फेवरेट गीत है और इसकी फरमाइश करते रहते हैं। तो चलिए आज उनको फरमाइश किए बगैर ही उनकी पसंद का गीत जो है वो मिल जाता है।
1: इसका थैंक यू मुझे देना
0: जी।
1: मैंने कहा गुलाम भाई को कह रही हूँ इसका थैंक यू मुझे देना,
0: क्योंकि मैंने बातों में लगाए रखा और इन्होंने गीत नहीं ढूंढा और इसलिए आपका फेवरेट गीत आ गया। ये बात बनती है वैसे आपका शुक्रिया अदा करने का। चलिए जी, और प्यारी बहना सादिया जी आज आपके लिए कोई खास गीत नहीं प्ले किए, तो एनीवे ये गीत इंजॉय कीजिएगा, है थोड़ा सोच भरा गीत है। तो आपके साथ आजरा जी हैं, वो भी हैं, और इस वक्त बाबर शहजाद बाबर शॉप पे शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली सिकंदर अली, उनके नाम भी। अब फिर वो सिकंदर अली फ़ोन करेगा कि भाई रोने वाला गीत लगा दिया, हम तो रोमांटिक गीत सुनना चाहते हैं। तो चलिए इससे दिल बहलाइएगा।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना जो नजर किया था गुलाम भाई और उनके स्टाफ के नाम। और अब इसके साथ कमर्शियल का टाइम हो गया है। और किसका फोन आया था अभी?
1: गजाला
0: जी,
1: गजाला,
0: गजाला जमीन का,
1: जी,
0: मेरी प्यारी बहन का।
1: जी जी,
0: तो क्या कह रही थी वो?
1: वो यही कह रही थी कि बोलो।
0: तो बोलती रहे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, बोलती रहे
1: जी।
0: चलिए, और तो बोलेंगी नहीं आप, कम से कम ये तो पता ना आप क्या करना है। हम लोगों ने
1: जी
0: क्या करना है
1: इस वक्त? हम ब्रेक पे जा रहे
0: हैं। हाँ, शुक्र है इतना तो याद है आपको। तो दोस्तों,
1: दिख रहा है सामने से।
0: ठीक है, तो अब चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब। जैसे कि उमा खान ने कहा कि कमर्शियल टाइम, ब्रेक का टाइम हो गया है, और कमर्शियल ब्रेक के बाद आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे। गजला जबीन बेना आपके नाम भी होगा, और खान भाई और गुलाम भाई, सफीउल्ला भाई और मलिक इम्तियाज़ साहब, आपकी पूरी टीम और दीगर दो शहज़ादे बाबर शाह पे, बशारत अली सिकंदर अली, उनके नाम भी और दीगर सभी दोस्तों के नाम होगा। तो चलते हैं दोस्तों अब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 3538. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Kullo nafsin zaiqatul maut.
5: Muslim funeral service mein kafan dafan phoolon ka intezam islami shariat ke ain mutabik ghusl e mayyat ke liye aurat aur mard maujood hain. Top quality granite marble ke headstones aur full cover ko 30 saal ki guarantee ke sath banwane ke liye bhi Muslim funeral service ka naam yaad rakhe. Muslim funeral service, 4 Darfield Street off Lumland, Bradford 1. Telephone 723030, that's Bradford 723030.
6: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यानी कि फला फिल्म से लिया हुआ गीत। और अब जनाब वक्त जो है वो बहुत नज़दीक पहुंच चुका है जोहर की अजान के, तो इसलिए अब कोई गाना नहीं होगा। सिकंदर अली, अभी आपने बताया, पहले भी बता सकते थे, आपने बताया नहीं, आखिर पे बता रहे हैं कि सोबत अली भाई जो हैं, सोबत भाई, उन्होंने जनाब पहले मुझे फ़ोन किया था, तो उस वक्त मैं दूसरी लाइन पे था, उनकी कॉल में ले नहीं पाया, उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं किया और गाने तो उनके लिए मैंने लगाए, लेकिन अब पता चला कि आज सोबत भाई की बर्थडे है। तो जनाब सोबत भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू जनाब, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।

0: जी सुबह भाई हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो, सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपके लिए बाद में गाना भी ज़रूर लगाएंगे क्योंकि अब वक्त जो है वो गाने का नहीं रहा, लेकिन आपको हैप्पी बर्थडे कह देते हैं कि अभी से कह देते हैं। तो आप जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो बड़ी जो है धूमधाम से जनाब जो है वो बना रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और केक का भी मुझे लालच दिया। और जब मैंने कहा यार केक मीठा होता है ज़्यादा, तो मैं मीठा नहीं खाता हूँ, तो कहने लगे कोई गल नहीं, हमने तो जनाब आपको आपके लिए पहले ही रोस्ट वगैरह पता नहीं और क्या क्या नाम लिया, मैं मुझे इतने नाम भी नहीं याद रहते, आपको कोई याद रहे हैं? नहीं याद रहे ना आपको भी? तो जनाब चलिए आप लालच दे रहे हैं मुझे, तो चलो फिर मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ जब प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। तो उमा जी रेडी हैं ना आप भी?
1: जी जी।
0: तो हम आ जाते हैं जनाब सोबत भाई, आप का प्यार खलूस मोहब्बत इतनी चाहत से आपने इनवाइट किया और कहा कि आपके लिए चीज़ें रेडी की हुई हैं, तो रेडी हुई चीज़ों को तो नहीं हम ना इनकार करते। तो मैं और उमा खान दोनों आ जाएंगे, प्रोग्राम ख़त्म बस होने वाला है जनाब। अब बड़ी बेचैनी के साथ हम 2 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि कब 2 बजेंगे हम निकलेंगे। तो सुबह भाई आपके यहाँ आएंगे और इतनी ढेर सारी चीज़ों का नाम लिया आपने, तो जाहिर है फिर आना ही पड़ेगा। तो शुक्रिया जनाब एक बार फिर आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो आप दोस्तों चलते हैं जोहर की अजान सुनते हैं, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं।
2: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही जो है टाइम चेक कर लेते हैं। इस बार मैं कर लूं थोड़ा, आपको मौका मिल जाएगा ना। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:44, यानी कि 1:44 और अब जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद जो गीत होगा वो रीटा बेटिया इस वक्त अमेरिका में सुन रही हैं। उन्होंने फरमाइश की इस गीत की और ये गीत अमूमन मैं अपने प्रोग्रामों में इसको पेश करता रहता हूँ। तो एनीवे बेटिया, आपने इस गीत की फरमाइश की तो आप का गीत जो है कमर्शियल के बाद फ्लैशबैक की शक्ल में आपके लिए पेश करूँगा। और सोबत भाई, आपका नाम साथ जोड़ देता हूँ, आज आपकी सालगिरह है, आपको सालगिरह की बहुत बहुत एक बार फिर मुबारकबाद। स्पेशली जी
2: मेरी तरफ से भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो सबद भाई को।
1: थैंक यू। तो और सिकंदर अली और बिशारत अली भी आपको मुबारकबाद देते हैं और जनाब हमारा पूरा स्टाफ, उनकी जानिब से आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। और ये गीत जो है बिटिया रानी रीटा की फरमाइश पे पेश करने जा रहे हैं और आपके नाम भी सोबत भाई, थोड़ा रोने वाला गीत है, बर्थडे पे ऐसे गाने तो नहीं
2: रोने वाले
1: तो नहीं होते, लेकिन कोई बात नहीं। मैं कोई जब आखिरी गीत होगा, जाहिर है प्रोग्राम के अभी शायद दो गीत लग जाए, दो और लग जाए या एक ही लगे, क्योंकि ये गीत थोड़ा सा लंबा गीत है और नहीं इतना लंबा भी नहीं कि चलिए आखिरी गीत तो होगा ही ना, दो ना हुए तो एक तो होगा ही। तो सोबत भाई वो भी आपके नाम करेंगे जनाब। तो एनीवे दोस्तों, चलते हैं अब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद रीटा बेटिया की पसंद पे गीत सुनेंगे, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मन पसंद सनराइज रेडियो के संग।
3: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
3: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.
6: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more at Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165, Raman 078 341 77866, Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: जी दोस्तों, अभी आपने दो प्यार भरी आवाजों में प्यारा सा गीत सुना। रीटा बेटिया अमेरिका में सुन रही हैं, उन्होंने इस गीत की फरमाइश की थी। और सोबत भाई, ये प्रोग्राम का आखिरी गीत जो हम अमूमन में जब जाता हूँ लगाता हूँ, आपके नाम करता हूँ और एक बार फिर आपको हैप्पी बर्थडे। तो जनाब, अब वक्त आ चुका है इजाज़त लेने का। आप ले लें इजाज़त, फिर हम ले लेंगे।
1: आज प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ जा रहा है, तो इंशाल्लाह फिर कल दोबारा मुलाकात होगी। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।
0: जी मुझे भी आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मुलाकात होगी कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो 103.2 FM ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में। इसके साथ साथ अगर आप हमें दुनिया के किसी और हिस्से में सुन रहे हैं तो उसके मुताबिक हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इंडिया में सुन रहे हैं तो आपको हम कहेंगे आपका स्वागत करते हैं हम, स्वागत। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सुन रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन इंग्लिस्तान में तो आप सुन ही रहे हैं। मतलब आप इंग्लिस्तान में अगर हैं और हमारा रेडियो स्टेशन सनराइज रेडियो नहीं सुन रहे तो फिर और क्या सुन रहे हैं? घर वालों की बातें सुन रहे हैं या अपनी वाइफ की बातें सुन रहे हैं या वाइफ अपने हस्बैंड की बातें सुन रही हैं? बहरहाल आप सारी बातों को एक साइड पर रख दीजिए और सुनिए सनराइज रेडियो 103.2 FM, इसकी फ्रिक्वेंसी है। इसके साथ साथ अगर आप हमें इंग्लैंड में सुन रहे हैं तो ऑफकोर्स हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आपके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, आपका दिन रात कैसा, ये दिन रात एक किया हुआ है या दिन और रात अलग-अलग से हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करते हैं कि उनका दिन और रात का पता ही नहीं चलता। वो या तो रात को काम कर रहे होते हैं तो दिन को घर वापस जा रहे होते हैं, और अगर दिन में काम कर रहे होते हैं तो रात को घर वापस जा रहे होते हैं। बहरहाल आप किस कैटेगरी से हैं, कि आपका ताल्लुक किस कैटेगरी से है यह हमें ज़रूर बताएगा। स्टूडियो का नंबर हमेशा की तरह आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। आप हमें अपने टेलीविज़न पर भी सुन सकते हैं, आप हमें रेडियो प्लेयर पर सुन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफकोर्स सुन सकते हैं sunriseradio.fm पर, और इसके साथ साथ आप अपने Amazon Kindle Fire पे भी सुन सकते हैं सनराइज रेडियो की नशरियात। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर तकरीबन 3 घंटे, नेक्स्ट आइंदा जो 3 घंटे हैं हमारा आपका साथ रहेगा। और तकरीबन मैंने इसलिए कहा है कि इंसान है, आगे पीछे हो सकते हैं हम, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में साथ साथ जो हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले हमें मैनचेस्टर में सुन रहे हैं तो आप हमें DAB के ज़रिए सुन रहे हैं, और लीड्स में भी DAB के ज़रिए सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ओल्डम, रॉसडेल, ईस्ट लंकशायर और मिल्टन किंग्स, वाओ, मिल्टन किंग्स में आप हमें सुन पा रहे हैं DAB डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे नहीं, साल के 365 दिन नहीं, बल्कि हमारा और आपका साथ उम्र भर का है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

ओके सो बात यह है कि गाने तो हम सुनते रहते हैं, इसके साथ साथ हम मूवीज़ भी देखते रहते हैं, मूवीज़ के साथ साथ हम ड्रामे भी देखते रहते हैं। मतलब क्या क्या इंसान देखे, सारा दिन मोबाइल भी देखते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो तो हम करते हैं बातें, बातें सुनने के लिए हम रेडियो ऑन करते हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत बोर हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार रेडियो पे क्या चल रहा है, या तो खबरें या तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपको हर घंटे के बाद जो हमारा खबरनामा मिलता है उसमें आपको खबरें मिलती हैं, ट्रैफिक की अपडेट मिलती हैं, जिससे आप बाखबर रहते हैं कि दुनिया में और आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है। इससे सनराइज़ आपको अपडेट रखता है। इसके साथ साथ आपको गाने तो हम सुनाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमारे शो में आज नहीं होने वाली है, वो ये है कि फरमाइशी गाने मैं को नहीं चलाने। अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। आप कभी भी हमसे बात करें, और बात करने के लिए नंबर तो आपको पता ही है, और हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306666, यानी कि 4 दफ़ा 6, मतलब 01274306666। आप हमें स्टूडियो में अभी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि व्हाट आर यू अप टू।

कि एक जमाना हुआ करता था कि जब बड़ा मायूब समझा जाता था कि कोई हमें फॉलो कर रहा है, कोई आपका ताकुब कर रहा है। आजकल हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे को यही कहता है कि आप मुझे फॉलो करें। आजकल हम खुद किसी को दावत दे रहे होते हैं कि भाई हमें फॉलो करें, मतलब मैं जहां जहां भी जाऊं, मैं जो कुछ भी करूं, मैं जो कुछ भी खाऊं, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मतलब आजकल की जिंदगी इस तरह की हो चुकी है। बहरहाल आप भी हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, और इसके साथ साथ हमेशा की तरह आप हमें सुन पा रहे हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू भी, sunriseradio.fm।

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official Media Partner Sunrise Radio.
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
3: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274733732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

राइट जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप हमें कॉल करें 01274306666 पर। अच्छा, ये हमारा एक कह लीजिए कि ये देसियों का एक मामला है कि हम लोग ईमेल्स और टेक्स्ट वगैरह पर बहुत कम यकीन रखते हैं। हम अगर ईमेल कर भी दें किसी को गलती से, या फिर उनको हम मैसेज कर दें टेक्स्ट मैसेज, एक तो ये धड़का सा लगा रहता है कि टेक्स्ट मैसेज अगर आपने किया है तो वो सीन हो गया है या नहीं सीन हुआ। अगर सीन हो गया है तो वो बंदा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ ईमेल्स पे तो खैर ये तरीका नहीं है कि आप चेक कर सकें कि किसी ने आपकी ईमेल पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली। बहरहाल होता यह है कि हम लोग ईमेल्स पे और टेक्स्ट पर ये इन चीज़ों पे बहुत कम बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को ईमेल किया तो वो ईमेल कहीं पर गवास गई है, मतलब कहीं पे खो गई है, उसका कोई नामो निशान नहीं है कि अगले बंदे को पहुंच गई है या उसको रिस्पॉन्ड करने में कितना वक्त लगेगा। लिहाजा हम बिलीव करते हैं फ़ोन कॉल्स पर। हम कहते हैं कि यार फ़ोन करो यार, क्या है यार, मतलब इसमें से पहले चेक करो, मतलब डायरेक्ट बात जब तक बंदे से ना हो हमें तसल्ली नहीं होती। तो बहरहाल आप अपनी तसल्ली रखिए और हमें कॉल कीजिए 01274306666 पर। आपकी फरमाइशें बहरहाल हम नहीं ले रहे, लेकिन अगर आपकी कोई ये फरमाइश है कि आपने मेरे थ्रू किसी को आई लव यू कहना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं। मैं आपका जो पैगाम है, मोहब्बतों भरा पैगाम, वो पूरी ईमानदारी से थर्ड पार्टी तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।

बेहद बेहद बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। लाइंस बहुत बिजी, अगर आपकी कॉल नहीं मिल पा रही तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बहुत आपसे माजरा चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज जो आपकी कॉल्स आ रही हैं वो इतनी भरपूर आ रही हैं कि उसमें मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यकीन कीजिए, ये जो एक शो करना है ना, ये जो एक रेडियो का शो करना है, ये ऐसा है कि जैसे आप जहाज़ चला रहे हैं। मतलब आपको हर चीज़ के ऊपर, आप इतने सारे बटन्स आपके सामने होते हैं, आपको हर बटन के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि अच्छा कोई बटन आगे पीछे ना हो जाए, किसी टाइमिंग गलत ना हो जाए। तो बहरहाल आपकी कॉल्स का शुक्रिया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी कॉल्स सबकी जो हैं वो मैं रिसीव करूंगा और आपसे बात भी होगी। अगर आपको दोबारा डायल करना पड़ रहा है तो उसके लिए माजरत, और अगर आप दोबारा डायल करते करते नहीं थक रहे तो आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
3: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

सियाने कहते हैं कि आपकी जो नेटवर्थ होती है, किसी भी इंसान की जो नेटवर्थ होती है, वो अक्सर देखा जाता है ना कि किसी की क्या वर्थ है, वर्थ से मुराद जो नेटवर्थ है कि उसके पास पैसे कितने हैं, वो कितना अमीर है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। सियाने कहते हैं कि किसी भी इंसान का जो बैंक बैलेंस होता है, जो नेटवर्थ जिसकी होती है, वो उसका नेटवर्क होता है। जिस तरह आपका नेटवर्क सनराइज रेडियो है, या आपका फैमिली नेटवर्क है, और जो हमारा नेटवर्क है वो आप हैं। हमारा तो बैंक बैलेंस यही है, हमारा जो ख़जाना है वो आपकी मोहब्बतें हैं, और जो आपका ख़जाना है वो सनराइज रेडियो है, जो आप डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू सुनते हैं, और जिसमें हमारी जो मोबाइल ऐप है वो शामिल है, और इस ऐप के थ्रू आप हमें डायरेक्ट सुन सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई कह लीजिए कि थर्ड मैन या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका और हमारा डायरेक्ट राबते का एक सोर्स है, जिसके थ्रू आप से हम कलाम होते हैं और हम आपसे हम कलाम होते हैं। हम कलाम होने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से के थ्रू हमें रबता हमसे रबता कर सकते हैं, और sunriseradio.fm हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको हमारे सोशल्स के तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

बहुत से दिल जले हमें सुन रहे हैं और उन दिल जलों की ये फरमाइश है, ये तमन्ना है, ये चाहत है कि एक कोई दुखी किस्म की शायरी प्रोग्राम में शामिल की जाए। लेकिन एक बात मैं हमेशा से इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब इंसान कोई दुखी होता है ना, उसको दुखी शायरी, दुखी गाने, दुखी बातें और दुख पहुँचाने वाले जो लोग हैं उनसे मजीद थोड़ा सा किनारा कशी कर लेनी चाहिए। दुखी शायरी या दुखी गाने आप इसी सूरत में सुनना चाहते हैं कि आप दुखी हैं या किसी की याद आपको सता रही है। तो मैं आपसे माजरा चाहता हूँ, अगर आप ऑलरेडी दुखी हैं तो मैं आपको कोई दुखी शायरी सुना के, दुखी गाने सुनाकर मज़ीद दुखी नहीं करना चाहता। तो बेहतर यह है कि अगर आप ने दुख फोलने ही हैं, अपने खरोलने ही हैं, या उन दुखों को आपने दोबारा से ज़िंदा करना है या उनको ताज़ा करना है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको उसका एक बेहतरीन किस्म का उपाय बताऊंगा कि आपको जो दुख लाहक हैं उनसे आप छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर तो आपको पता ही है, 01274306666। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन्स लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

अच्छा जी, कहते हैं कि मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती, मोहब्बत की सिर्फ एक ज़ुबान होती है, और वो ज़ुबान होती है कि किसी भी ज़ुबान में अगर आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसको प्यार से बोला जाए तो वही मोहब्बत की ज़ुबान होती है। मोहब्बत की ज़ुबान वही होती है जो आपकी मादरी ज़ुबान होती है। अगर आप अपनी मादरी ज़ुबान से प्यार नहीं करते तो आप प्यार कैसे कर सकते हैं। तो आपकी मादरी ज़ुबान चाहे पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, उसके अलावा पहाड़ी है, पोटोहारी है, या पश्तो है, या किसी भी किस्म की आपकी ज़ुबान है, अगर आप वो ज़ुबान बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शायद मोहब्बत करने में भी किसी हद तक कंफर्टेबल ना हों। मोहब्बत तो हमेशा अपनी ही ज़ुबान में उसका मज़ा आता है, और चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो लड़ाई हो, जब इंसान लड़ाई भी करता है, गुस्से की हालत में भी होता है, तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में ही लड़ाई करता है, तो उसको अजीब सी तस्कीन मिलती है कि शायद ये सही तरीका है लड़ाई करने का। मतलब हम लोग जो अपने अपने वतनों से यहाँ पर आकर आबाद हैं, अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं, जब हम लड़ाई करने की कह लीजिए स्टेज पर आते हैं, किसी से लड़ाई करना चाहते हैं या आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती जब तक हम अपनी ज़ुबान में उससे आर्ग्यूमेंट ना कर लें, या उनसे हम लड़ाई ना कर लें, उनसे गिला ना कर लें। ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो बोलते हैं, वो अपनी ज़ुबान में लड़ाई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। बहरहाल ज़ुबानें सारी अच्छी हैं, और जो भी ज़ुबान मोहब्बत और प्यार से बोली जाए वो सारी अच्छी ज़ुबानें हैं, सारी हमारी ज़ुबानें हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने किस ज़ुबान से हमसे बात करनी है, आप कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसमें मोहब्बत ज़रूर शामिल कीजिएगा। स्टूडियो का नंबर है 01274306666। आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज़ रेडियो।

अच्छा जी, वक्त की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात ये होती है कि वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो गुजर ही जाता है। हालांकि वक्त की रफ्तार एक ही होती है, जब आप खुश होते हैं तो बहुत जल्दी गुजर जाता है, लेकिन अगर आप खुश नहीं होते हैं, अगर आप परेशान हैं, बेजार हैं, या आपको किसी चीज़ में नुकसान पहुंच चुका है, तो वही वक्त आपके लिए जो एक सेकंड है वो एक घंटा बन जाता है, एक घंटा एक दिन बन जाता है। तो इसी तरह जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड आपके ऊपर एक पहाड़ जैसा बोझ लेकर आता है। आपको लगता है कि ये वक्त गुजर क्यों नहीं रहा। अभी हमारे शो को भी देखें, आपके साथ साथ चलते चलते हमारा वक्त कितना अच्छा और खुशगवार गुजर रहा है कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। वक्त भी गुजर जाएगा, आप भी जहां पर जा रहे हैं, जहां जाना चाहते हैं, आप भी गुजरते गुजरते वहां पहुंच जाएंगे, और हम भी आपसे बात करते करते इस शो को अलविदा कहकर फिर अगले शो की इजाज़त लेकर आपसे हम अलविदा हो जाएंगे, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तो वक्त है, अभी आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आपने रहना है हमारे साथ साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हैं आपके साथ साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें

अच्छा जी, आपकी कॉल्स का बेहद शुक्रिया। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं शायद जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाता हूं। तो भाई आई विश के मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता तो मैं आपको दिखा देता कि स्टूडियो के अंदर जो ये जो लाइंस फ्लैश कर रही हैं टम टम टम टिका टिका टिका टम टम टम, ये मैं आपको दिखा सकता लाइव। लेकिन वो भी दिखा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखिए, चूँकि कॉल्स की जो नंबर ऑफ़ कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए और जिससे भी बात होती है वो भरपूर बात हो रही होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर बात हो, क्योंकि हम भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ हैं। हम ना ही हमारा ये आखिरी शो है और ना ही आपकी आखिरी कॉल है। हम बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे और म्यूज़िक भी सुनेंगे और इसके साथ साथ मशहूरियाँ भी सुनेंगे। देखिए, ये जो मशहूरियाँ होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। गाने तो सारे लोग एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं, लेकिन मैं आप सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको आज मशहूरियाँ डेडिकेट करूंगा। जितने भी एड्स हैं ये मैं आपको डेडिकेट करूंगा। मैं कहूंगा ज़रा इनको गौर से सुने और सुने कि ये क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आप की कॉल नहीं मिल रही तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। वो मशवरा मुफ्त है और मुफ्त मशवरा देने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे तो आप मुझे नहीं देंगे और ना ही किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक छोटा सा काम करेंगे कि मैं आपको थोड़ी देर बाद वो मशवरा बताऊंगा, और मशवरा बहुत फ्री में है, ये ज़हन में रखिएगा। उसका कोई नुस्खा नहीं है, उसका मतलब कोई उसकी कीमत नहीं है। वो मशवरा मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं 01274306666 पर। अगर आपकी इस नंबर पर कॉल नहीं मिल रही तो मेरे पास एक बहुत मुफीद मशवरा है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड।

राइट ओ लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हुआ चाहता है प्रोग्राम का एख्तिताम। ओके, यहाँ पर मुलाकात जो हमारी पिछले 3 घंटे से जारी थी वो अब उसका कह लीजिए कि एख्तिताम हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अंटिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखा कीजिए, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने माँ बाप का। क्योंकि माँ बाप दुनिया में इंसान की 2 आंखों की तरह होते हैं। अगर एक आंख देखना बंद कर दे तो दूसरी आंख उसका काम देती है, लेकिन अगर दोनों आंखें देखना बंद कर दें तो इंसान की जिंदगी एक अंधेरा बन जाती है। उसको दिखाई कुछ नहीं देता, उसको सुनाई भी कुछ नहीं देता। अपनी आंखों की हिफाजत किया कीजिए, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों, रुफका और अपने अजीजों अकारब का ख्याल रखा कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692 3788.
2: Official media partner Sunrise Radio.
3: Move for 10 आ गया है. This Girl Can का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है. बस 10 मिनट मूव करे महीने में 10 दफा. मुझे अब ज्यादा एनर्जी फील होती है और कॉन्फिडेंस भी. अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है. सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं. जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें. मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. पूरे मुल्क की ख्वातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं. आप भी ज्वाइन करें. सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org. Or www.guruma.com.
1: गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ दो पौंड ना कानस लाने ना एक पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935।

अपने वालों सस्री अकाल कह रहा हां, कबूल करो। इस खुशी दे मौके ते जिथे एडे जश्न मनाए जा रहे ने, अज इंडी सगु वास्ते उस दी एक खूबसूरत पेशकश दे विच जो मेरा सब तो फेवरेट गीत है, बाबियां दे चल चलिए।

0: नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको बताने जा रहे हैं किस्सा एक किस का कि किस तरह बनी एक नॉर्मल बर्थडे पार्टी एक ऐतिहासिक बर्थडे पार्टी और हुआ किस तरह से उस किस पर बवाल।
1: अजी भाई, सत श्री अकाल, सत श्री अमित की हाल है भाई, की रोना पाया भाई। यार कोई नहीं, अभी मेरी मित्र से भी बात

0: सारी दुनिया पप्पी ले रही है।
1: लेकिन बाजी पार्टी में थोड़ी ले रही, क्या बात कर रहा है?
0: मैंने एक बार ली थी लेकिन पूरे मीडिया ने उसको 10 बार दिखाई, इसमें मेरा क्या कसूर?

0: पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026, three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
1: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
2: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
1: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
2: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
1: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274733732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें

छोड़ी तकरारों में, रोका टोकी वाले यारों में, छुपे छुपे से इशारों में ही जिंदगी है कहीं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले, जिन्हाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी। नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना, कानस लाने ना 1 पाउंड। छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: वो एक ऐसा दौर था, वो एक ऐसा दौर था जब त्योहारों का आलम ही कुछ और था। होली की मस्ती में भी छाया आजादी का जज्बा था। तीन रंग में रंग गया मानो हर गली मोहल्ला कस्बा था।

0: दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.

खामोश। मैं समाज समाज हिंदू सिख मुसलमान ईसाई ये सब मेरे ने उसी कौन की धर्म है थोड़ा की चाहिदा थानू बोल दे क्यों नहीं की चाहिदा थानू